ஜெயதி சிந்துரவதனோ தேவோ யத் பாத பங்கட ஸ்மரணம் வசரமணிர்வதமசாம் ராசின் நசே இது விக்னானாம். ஜெயபிரமணே சூரிய உகவதாத் அந்தர் நஹிச ஹோது. தேபிரமணே ஸ்ரீ கணராயச நாமஸ்மரண பூஜன் சிந்தன் கில்ல அஸ்த விக்னாஞ்சா ராசின்சா விநாஷ ஹோது. த்யா கணராயச ஜெய ஜெயகார அசோ. கணபதி பப்பா மோரியா மங்களமூர்த்தி மோரியா. சிரோதே ஹோ தமாஷா மதே தேக்கில் பிராரம்பிக் கண சாதர கரணியாச்சி आपली प्राचीन परंपरा आहे. असाच हा एक फक्कड प्रसिद्ध गण स्वरराज पंडित छोटा गंधर्व आणि सहकाऱ्यांनी गायलेला. शब्दरचना शाहीर पठ्ठे बापूराव यांची. संगीतकार वसंत पवार. चित्रपट पठ्ठे बापूराव. नवरसांची जागृती व्हावी यासाठी उत्तम कला साध्य करून त्या गणरायाचं कौतुक केलं जातं. शाहीर पठ्ठे बापूराव यांचा हा गण आपल्याला थेट शाहूनगरी कोल्हापूरच्या पंचगंगेच्या तीरावर घेऊन जातो. चला तर मग ऐकूया हा गण.

बरबर खरखर संभवा चूला रो शिवला नवरत सगला ये शिवला पुला सागला उगला निगला मनोदेगला कोचला शुभ मंगल चरणी गना नाचला शुभ मंगल चरणी

रंग लिए रंगीला निकला लाल गुलाबी धानी, रंग लिए रंगीला निकला लाल गुलाबी धानी, उस पे मल के रंग प्यार का गाए।

दोस्तों, जहन के किसी कोने से तांक झांक कर रही हैं कुछ ऐसी गजलें जो आप ही नहीं मैं भी भूल चुका हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें सुना भी ना हो, क्योंकि ये HMV का वो खजाना है जो आज से 25 साल पहले अलग अलग EPs पर रिलीज हुआ था और अब कैसेट और CD की शक्ल में आप तक पहुंच रहा है। आइए उन्हीं भूली बिसरी यादों को आवाज दें और सुने उन गजलों की गुनगुनाती आहट।

0: बताइए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ

छोटी सी हो लाडो जी, गहनों से मुझको सजा दो, नहीं तो मैं रो दूंगी। देखो जी दिल न

जल्दी से टिकट मंगवा दो नहीं तो मैं रो दूंगी। देखो जी दिल न तोड़ो नहीं।

जी बोले पपिहरा भेद खोले तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले तेरा मेरा तेरा जी मैं।

अलावा रामला तेल बालों को घना व काला बनाता है। इससे आपके बाल रेशम जैसे मुलायम हो जाते हैं और सर को ठंडक पहुंचती है। हमेशा इस्तेमाल कीजिए डाबर आमला तेल।

0: वाली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल की नैया को पार लगा दे। अरे पांडू अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद दे ले।
0: ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय।

0: शब्दांचं घडतं काव्य आणि काव्याची घडतात गाणी. मनात रुंजी घालणारी हीच गाणी आठवणी बनून पुन्हा एकदा ओठावर येतात आणि मग बनतात ओठावरली गाणी. अशा सदाबहार गाण्यांचा आनंद देणारा आमचा कार्यक्रम जरूर ऐका, ओठावरली गाणी. सादर करते विकास भावे. दर बुधवारी दुपारी 1:30 आणि पुनःप्रसारण दर गुरुवारी रात्री 8 फक्त रेडिओ विश्वासवर.
1: राज कपूर की नीली आंखें देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दाना पन और दिलीप से बाल, संजय का छेल छबीला, शशि का शर्मीला और मनोज का भोला भाला, शम्मी सा रंगीला, शौक हो वो राजिंदर जैसा और सुनील का बांका, जिसमें इतने गुण हो सकीरी जोड़ उसी से टांका, ना बंगला ना मोटर मांगू ना कपड़ा ना गहना, ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना.
2: कमर हेलन की आंखें पद्मनी की गाल विन्नी के, अदा आशा की शोखी साधना की बाल सिन्नी के, नूतन का कद शर्मिला की अंगड़ाई, बबीता की जवानी और नंदा की सी रहनाई, वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती, अदा में नाद में नखरे में हेमा मालिनी जैसी, नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए, अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए.